आओ एक शब्द होर फिर आपां समाप्ति करनी है। महापुरुष संत अनूप सिंह जी उन्होंने आपदियां नूं दसरियां तो बाद शब्द नाल जोड़ना है। हुक्म होया सी वीरां वल्लों शब्द सुनाउण लई, सब पकड़ो चरण गोविंद के छाडो जंजारा। सिद्धी धारना है भैणां नूं वीरां नूं सब नूं बेनती है, सारे हाजरी लवायो। सत श्री अकाल दा जकारा चढ़दी कला विच बुलायो। फिर आपां कीर्तन दी समाप्त

ना ही कोई, ना को हुआ ना को होए, जे बड़े आप ते बड़ देरी दात, जैन देन करके की ती रात, खासम बिस्तार हैं ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनों करों गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

प्रगास गोरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राउ हर जन केवड भाग बडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपदास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उदम जा आ हर हर जियो परया सैल पत्थर मह जन तो पाए ताका रिजक आगे कर धरिया।

रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किस की धरया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काही मन पाओ करया। उड़े उड़िया वैसे गोसा, तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सुदान, ठाकुर करतल तरया। जन नानक बाल बाल।

पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे, मरण काल का त्रास निभरे।

आए प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कांता, काल पाए ब्रह्मांब पतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु परगासा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो,

जने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को बल मोह वध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के बट बट की जानै जब उद कर

तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न है भैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पहन पहन तो देती। तुमरा लखन

अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संग रो, दोष जेते उठ बदत पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जबन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सब टारी, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट उठर तत्काल, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो।

हमारी सर्वठार मोह सहाय दोष दोगते लेह बचाय। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो सरी असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो तांगा वो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं करते रहे करता तेरा सब किस है।

नानक दास सदा कुर्बान। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चिनायो पंथ गुरु मान्यो ग्रंथ

सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ विश्व चसिया घड़िया पहरां सिती वारी महावा सूरज कुरत अनेक नानक करती की जिते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मय थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल यान लो पवन जबरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत तेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त न नायक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बैनो सहस तब गंधे बचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए इसद चानण सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहिया ही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कहो होए जाते तेरा नाहीं वास्ता राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हार ले वो मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडाओ पुन वडाही राहु साकत हर रसाद न जानिया तिने अंतर होम कंडाही ज्यों ज्यों चलहे चुभ दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडाही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहां खाट चलो हरला आ गए बसन सुहेला

सु अकाथ कथा जन जानी जा को आई सोई बिहाजो हार गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होएंगो फेरा अंतर जाम।

तो सात संगत मैं सिद्ध गोश के नाम की व्याख्या तुहाडे नाल सांझी कर हूँ। इस दो तरीके हैं, एक तो है कि अगे मैं पढ़ा तो पिछे तुसी पढ़ो, तुहाडा उचारण विश्राम परपक हो जाएगा। ये ठीक है कि असी समय तो पहला ऐसा प्रबंध नहीं कर सके कि तुहाडे सारयां दे हत्थां विच सिद्ध गोश बाणी की लिखत भी हो, तो चंगा उद्यम किया प्रबंधकों ने कि स्क्रीन दे राही तुहानूं वो सारा कुछ तुहाडे सामने आए। हुण असीं आरंभता करन जा रहे हैं राम कली महना पहला सिद्ध गोष्ठ। ए राग दा नाम राम कली है, महला पहला पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई बाणी जिसका नाम सिद्ध गोष्ठ। इस लंबी बाणी विच एक रहाओ की पंक्ति है, जिमें तुसी पली पांत जानते हो सुखमनी साहब भी, हालांकि 24 अष्टपदियां 24 श्लोकों की बाणी पर रहाओ की पंक्ति एक ही। रहाओ की पंक्ति का की महत्व है, ये सारी बाणी का सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है। इसलिए इसनू ध्यान में रखना बहुत जरूरी। गुरु नानक पातशाह ने योगियों नू ये कहा, तुसी क्यों घर छड़ के पौ रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, कदे किधरे कदे किधरे कदे किधरे, क्या भवी है, इस पौन की की लोड़ है, की भ्रमण करन दे नाल तीर्थां ते जाण नाल सुचमता हो जाए, क्या भवी है। क्योंकि गुरु नानक पातशाह का मत योग न भगवी कपड़ी, योग न मैले वेश, नानक घर बैठे योग पाइए सतगुर कै उपदेश। आख्या भगवे कपड़िया नाल कोई योगी नहीं हो सकता, कोई सोने केसां दियां जटावां बनाउण नाल योगी नहीं हो सकता, कोई पिंडे ते सुआ मरण नाल कन्नां विच मुंदरां पाउण नाल खिंठा लैण नाल योगी नहीं हो सकता। बहुत सारे शब्द ने गली योग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कहिए, योग न खिंठा, योग न डंडा, योग न पसम चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड बनाया, योग न सिंगी वाई है, अंजन माय निरंजन रही है, योग जुगत इव पाई। तो गुरु नानक पातशाह ने इस 73 पौड़ियां दी बाणी दी एक रहाओ दी पंक्ति, जिसका केंद्रीय भावे है कि क्या भवी है, सत सुचा होए सात शब्द बिन मुकत न होए। हूं क्योंकि केंद्रीय पंक्ति है, इसमें उसी समझ के तुरंत आख्या ये भ्रमण की की लोड़ है, ये जिहड़ा तुसी दिन रात का भ्रमण चक्कर लाया दी की लोड़ है। गल तो अंदरले नूं सुचा कर दी, क्योंकि गुरमत का सिद्धांत है मन मैले सब कुछ मैला, मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा न होए, तन तोते मन अच्छा न होए, तन तोते मन अच्छा न होए,
ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ? ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ,

0: आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाई। आसन कहते ने बैठन वाली जगह, बैठना होंगे बैठना भाई उस परमात्मा नू थिर नारायण उस नारायण नू थिर कायम मनना ऐसी गुरमत पाई। ये है गुरु की मत ते गुरमुख बूझे आप पछाण, गुरमुख बूझे आप पछाण। सच्चे सच समाए, सच्चे सच समाए, गुरमुख गुरु के उपदेश राही अपने आप को पछाणना। सानू गुरबाणी रोज कहती है भाई अपने मन को समझाया करो, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप। अपना मूल पछाण, अपना मूल पछाण, अपना मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी गुरमती रंग मान, गुरमती रंग मान, नौशाद संगत समा हो चुका है।
1: केरबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
4: 250-392-3874. Odri Khalsa da Topi Sardar Shahbaz Singh 220 Singh da jatha leke kile de nazdeek pahunch gaya. Oh Sardar kare chutti kattan gaya hoya si. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਪੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਓ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਇਉਂ ਬੋਲਦਾ ਬਈ,

सफल संगीत की सफल परंपरा में कदम से कदम मिलाती थी। पायल रिकॉर्डिंग कंपनी का संगीत प्रेमियों के नाम एक प्यार भरा पैगाम। संगीत का सही मजा चाहते हैं तो देखभाल कर जांच परख कर असली पायल कैसे खरीद सकते। पायल का नाम संगीत के सही आनंद की सहायता

ने श्रवण किया सी अरदास कबूल हो जावे। अरदास करन वाले विच तीन गुण चाहिए ने, निम्रता सिदक और इसे प्रकार दे नाल आत्म समर्पण। जिथे मंगन लई नीवे होना पैंदा है उथे फिर कुछ समा उड़ीक सिदक भरोसा भी रखना पैंदा है।

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बंद हो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंचो हो जन्म गवावो काची तहग दवाल काहे गच लावो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोवो तिस सीतर मन जो

नानक एक लंगाए जी कर सच समावा बसंत हंडोल महला पहला राजा बालक नगरी काची।

भीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही भीतर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा धन संगरे कहया सुन है न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलहरे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईए नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईए कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेत भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर पर

सेव परम सुख पावे आत्म देव रहाउ कर्म हुए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उच्चरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहा

बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह देह शरीरा हमै रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत धारी बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे ना हो ऐ सोग मन मुख मुए नाही हर मन माही मर मर जमह पी मर जाए से जन जीवे जिन हर मन माए साच सुमाल है साच सुमाहे रहाऊ हर ना सेवह ते हर ते दूर जसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत सिओ घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोए दूजै लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत।

अवतार आप छोड़ होहे दास तपाई तौ जग जीवन वसै मन आई भगत करे सद वेखै हजूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर इस भगती का कोई जाने पियो सब मेरा प्रभ आत्म देव आपे सतगुर मेल मलाई जग जीवन स्यो आप चित लाई मन तन हरिया सहज सुपाई नानक नाम रहे लिव लाई बसंत महला तीजा भगत वच्छल हर वसै मन आई गुर कृपा ते सहज सुपाई भगत करे विचो आप खोए तद ही साच मलावा होए भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार गुर कै हित साचै प्रेम प्यार रहाऊ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर शब्दी विचो हो मैं

ऐ सोए आप अपुल सच्चा सच सोए होर सब भूल है दूजे पत खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुमाणी बसंत महला तीजा बिन करमा सब भरम भलाई माया मोहे बहुत दुख पाई।

आई निश्चल मत सदा मन तीर हर गुण गावे गुणी गहीरा नामो भूले मरे बिख खाए बिरथा जन्म फिर आवह जाए रहाउ बहु पेख करह मन शांत ना होए बहु अभमान अपनी पत खोए सेवद भागी जिन शब्द पछाणिया बाहर जांदा घर मह आणिया घर मह वस्त अगमे अपारा गुरमत खोजह शब्द बिचारा नाम ना

वनस्पत मौली चढ़या बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्याव हो मुगद मना ता सुख पाव हो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया भया आनंद अमृत फल पाया।

ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेतै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फलह फुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरै भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एहो मन जलिया दूजै दोए रहाओ एहो मन धंदै बांदा कार कमाए माया मूठा सदा बिल लाए एहो मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एहो मन छूटा गुर लिया छडाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एहो मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हो मैं कड़ै तोए रहाओ सतगुर बाणी शब्द सुनाई एहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगै ता सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वाड़ी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिचों वारिया पाई गुर शब्द बिचों बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होवे एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत प्याई विचों हो मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नो बख्शियो न पाई शब्दे लयन मलाई तूर तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाए आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन मन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सरब थाए गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर साक्त नर लोभी जाण है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए मन हर सिमरहो अंत सदा रख लए हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख भंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मनमुख फिर हो मैं मोए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिलै ता खोजी है मिल ज्योति ज्योत समानी माधो
साधु जन देहो मलाई, देखत दर्श पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाउ। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, धन साबत रास उबरिया। पाखंड भरम अपाव कर थाकी, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मलावे, नानक शांत हुए मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमन से, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनसे, गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृप से। जन्म जन्म के किल विकमल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाउ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सूबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे। जो बारक रसक पर्यो थन माता, थन काढे बिलल बलीदे। गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे, वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनीदे। हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक शरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाईए। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईए। गोविंद जीओ सत संगत मेल हर त्याईए, हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईए रहाउ। कर रतन लाल बहुमान कलादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईए। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यों सतगुर वस्त लहाईए। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईए। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईए। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईए। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान भया दुख बिखिया, दे मन मुख सुई सुन, राम नाम खिन पल नहीं चेतिया। जम पकरे काल सलोइ, गोविंद जीओ बिकहु मैं ममता मुइ। सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस भुइ रहाउ। सत संगत सा

0: शुभ गुण आ जाते ने। क्यों तो शुभ गुण मिलते ने, क्योंकि चंदन जिथे होगा वो तो वासना मिलनी ओ मिलनी है। और ऐ जे शुभ गुणा वाले हो जाते ने, जिन्हें भी सप होने जंगल दे ओ भी जाके चंदन नू लिपट जाते ने। जहरीले सप जहरा दे भरे हुए मरे आगर भयंगम बेड़े हो ता शीतलता न तजंत। बेड़े कहने लिपट जाना, जिथे चंदन का रुख होंदा ना प्रेमियो, सौ सौ को तो जिथे तक ओदी वासना जांदी है उधर नू सप तुरे जांदे ने। ते पते पते ते ताणी ताणी ते सप लटकदा हुंदा है, पर चंदन का गुण की है, सप्पा ने घेर लिया पर अपनी शीतलता नहीं छड़ी, अपनी सुगंध नहीं छड़ी। मलयागर कहिए चंदन, कोई अंगम कहिए सप, बेड़े कहिए लपेट लिया अपने विच। बेड़ ना रस्से बेड़ते होंगे सी, आप लपेटे दे देने। मलयागर चंदन बेड़े भावे जहरीले सप्पा ने लपो लिया ओ सारे शरीर नू, पर फिर भी उन्हें अपना गुण नहीं छड़िया। ऐसे साडे सतगुर ने बड़े ईरखा करने वाले लता मारियां गोलियां चलाईया, निरादर किया सतगुरां नू कबूल बोले, पर सतगुरां ने चंदन वर्गा गुण नहीं छड़िया। वो सदा चंदन ही रहे, अपनी खुशबू ही दिंदे रहे, ऐसे सतगुरु रामदास महाराज।
1: प्रहलाद कबीर त्रिलोचन
0: भगतां दा दोबारा प्रमाण दिंदे ने भाई, सुख प्रमाण उन्हें बार बार देना पैंदा है। ध्रुव जी साध संगत हो सतयुग दे विच वेख लो कथा तुसी सरवण कीती है, पांच बर को ना ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। अमर अटारी नू प्राप्त होए कबीर साहब जी कलयुग विच होए हैं, बनारस दे विच काशी दे विच कबीर साहब महाराज सेवन दा हुण भी बहुत वड्डा अस्थान है कबीर साहब जी दा। उन्होंने भरम पखंडा नू कटिया गुरसिख प्यारे, जेड़ा पखंड बनाया होया सी वी जेड़ा बनारस विच आके मरूगा ओ मुक्त हो जूगा। ये ब्राह्मणा ने साडे वीरा ने रीति चलाई हुई है भी काशी विच आके जेड़ा मरजूगा, शिवजी दा वसाया होया शहर है भाई काशी। एदा असल नाम जे तुसी सुनना याद रखियो वरना असी, असल नाम है जी दा बिगड़ के बनारस बने है। वरना असी ए दो दरिया ने उथे, एक नदी दा नाम है वरना, एक दा नाम है असी। ए दोहां दरियावां दे कंडे ते वसन करके ना इनु बनारस कहने, वरना असी जिनू आपा हुण बनारस कहन लगे। असल ना वारा नसी है, असल शब्द जेड़ा कागजां दे विच वारा नसी, वरना असी ते शिवजी भगवान दा बसाया होया शहर है। इनू वर दिता वे कहने, जेड़ा इत्थे आके मरूगा ओ ही मुक्त हो जूगा। ते गुरसिंह प्यारे हो 60 साल भगती कीती कबीर जी ने बनारस दे विच, जदों बुढ़ेपा हो गया 60 साल तो बुढ़ेपा शुरू हो जांदा है, ते सेवकां नू कहंदे चलो आपां ने इत्थे नहीं मरना। कहंदे किथे मरना, कहंदे आपां ने हड़म्बे धरती विच मरना है। तीन शब्द आउंदे गुरु ग्रंथ साहिब तुसीं पढ़दे सुणदे हो, ऊखर मगहर हड़म्बा, ये इको धरती दे नां ने भाई तीन। जिवें यूके कह लो, इंग्लैंड कह लो, बरतानिया कह लो, अजे अखो सक नाम कोई फर्क था नहीं तिना विच, इसे तरह ऊखर कह लो, मगहर कह लो, हड़म्बा कह लो, इको चीज है, एक धरती है, ये दूजे देवते ने रची है। गुरमुख प्यारे ब्रह्मा नू पता लग गया कि शिवजी ने रची है बनारस काशी, जिथे जेड़े भी जाके मरणगे मुक्त होणगे। ओनू ईरखा आ गई, कहना फिर मेरे को किसी ने आना ही नहीं। देखो किसे तक ईरखा देवत्यां दे विच, जे कहने कि शिवजी ने ऐसी पुरी बनाती, मेरी ब्रह्मपुरी नू किने पुछना, मुड़ के आना ही नहीं किसे। वो भी बैठ गए, गुरमुख प्यारे उन्हें भी रचना शुरू करता, कहना मैं ऐसी पूरी रचू, मरण की गल छो, जेड़ा पंछी भी उड़ के उपर नू लंघ जू वह भी मुक्त हो जाए। इना शरीका देवत्यां विच अपने विचे नहीं। ते उधर शिवजी नू भी पता लग गया भी मेरी पूरी तो हुण किसे ने पुछनी नहीं, ऐसे तो जेड़ा मरूगा वह मुक्त हो, ओदी पुरी नू जेड़ा लंघ गया उही मुक्त हो जू। उन्हें रोटी छड़ती भी मेरी कोठी बनाई तो इवें गई। ये देखो किथे ईरखा चलती है गुरसिख प्यारे। पार्वती कहनी भगवान जी रोटी कदे छड़ती, कहना रोटी ने छड़ा हजारा बार सप करे एवं गया और बैठ गया भाई, कहना उन्हें पूरी बना देनी है, मेरे को तो आना ही किसी ने नहीं। कहनी कोई नहीं मैं इलाज कर दी है, यह जे इलाज तो आप बहुत आने अज खे को सकना। आ कमरा वेखो जो बनाया ना, इतने गुरु महाराज प्रकाश है, ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ।

अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया। नाम रंग नाम चोज तमाशे,

लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जामना उतरस श्री गोविंद जामना उतरस श्री गोविंद उतरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभु प्यारे ए सुतने रसो

करता बिना केस है अस जुमला निशान, बिना केस है अस जुमला निशान और रहत

Hare Amrit Tatma, Hare Amrit Tatma, Nirmal Naam Japo Sadhu, Nirmal Naam Japo Sadhu. अंतर की गत सारी जियो,

निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे निर्मल नाम जपो सतगुरु निर्मल नाम जपो सतगुरु मुख अंतर की रतता जिस जल निधकार तुम जग आए सो अमृत गुरु पाही दियो सो अमृत गुर पाही दियो सो अमृत गुर ते पाया

जन नानक नाम समाए अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ी अमृत गुरमत पाए राम अमृत गुरमत पाए राम अमृत हर हर नाम है निर्मल नाम जपो सद्गुरु।

0: एक ओंकार सतनाम करता प्रख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोक काला सलोक भी महले पहले के लिखे सुंदे राज्य की धुनी सलोक महला पहला
1: बोले हरि गुरु अपने जोड़ी सुदवार।

कभी अपने अवसर जीव अपने कृष्णा जी कराओ दाता कृपा आप सुख देवे करे प्रसाओ तू जानो सबसे दिले

0: करो निचलत अनंत भव सतगुरुनाथ भव चढ़ाने आकाश भव जोत महाबल सूर भव चाव जाव पूर सगलियां बोल लिखिया सिले नानक निर्भो निरंकार सच्चे महला पहला
1: नानक निर्भो निरंकार कित्ते राम रवाल कितिया कन कहानी कित्ते भेद विचार कित्ते नचे मंगते गिरमन पूरा ताल बाजारी बाजार मैं कढे बाजार गावे राज रानिया बोले आल पुताल लटकनी आके मुल

दे मंगाय तस गुणा तो करे संसार चोरा चारा तुरिया खरा बाविकार कोंदा खा चलाया था तिना भी काई कार जल थल जी अपनिया लो आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जान।

जब कीर्ति संतों की से आया उन्हीं मंदिर पहन रखी उनका शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश ये गलानी देवे चढ़े सिवाया वडिया।

थोड़ी सच्चा साय व्यक्ति जी सत्य सत्य बरसाया जिस सूरत सिमल से सतनी सत कमाया सतगुरु मिलिया सत पाया जिनका हृदय सत बसाया मूर्ख सत न जानी।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़।

0: भय कुम चढ़ाई शरम पावतन होए नान भक्ति के रपे कूड़े सोए न कोई महिला पहला
1: पावतरा जन्नत का कूड़ों सरदार काम ने सब पूछे बे बकरे बिचारी

दुखदारु सुख रोग भया जा सुखदाम ना होई। तू करता करना मैं नाही, जाहू करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेर अंत ना जाए लखिया रहाओ। जात मैं ज्योत ज्योत मैं जाता, कलकला भरपूर दया तू सच्चा साहिब।

चलो महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रतिकृत वाहो जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है सतयुग रसंतो का धर्म ग्रथ वाहत रत जित का जोर ग्रथ वाहो द्वापुर तपे का सत ग्रथ वाहो।

दया कृपा संतोष सूत जत गंडी सतवटे जने जी का हित पांडे गत ना एहो तुटे नाम लगे ना एहो जले ना जाए धनसो मान स्नान का जुगल चले पाए सुकड़ मुड़ाया वे चुके पाया सिखा कंचड़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ झड़ पया वे तगा गया।

पुलिचरे प्राणी पौण वे हरंगी हरम सवारियां कोठे मंडप माणिया लै बैठे कर पसारियां कीर्तन मन भाव गर्भ जन

0: बाद भला करे गणेरिया कसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे सत पाए मानन जिसम लगा तिसम लगा सुपरवान
1: जो जी।

पहला आपे भांडे साजन आपे पूरण दे कि दूध समय चुले कि हाली पैसवन कुपरन खड़े ना सवारे नानका को नगर करे महला तू जाओ।

सतपुरुष सिख की करे सतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सतगुरु सिख के बंधन काटे।

जब अकार एव पक्ष देता पाप पुण्य तब कैसे होता। जब इसका बनते न जा पद तब

0: केवोदी रंगीली धरती दिवस निक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सुल्तानपुर से गुजार हूँ शाम शाम साहब श्री गुरुग्रंथ से मारा जीना जन की कृपा से दादे जितने की चंगी सेवा मिली है स्वागत लख लख बधाई नवे साल की गुरु साहब कृपा कर एक साल साढ़ा गुरु साहब की भक्ति बनती सिमन बतीत हो गई सोच त्रिक सेवा प्रवान करनी करो रचना पित्र वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।